ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਏਸੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਇਟਸ ਓਕੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਸੋ ਆਜ ਕਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਿੰਦੀ ਮੇ ਹੈ ਔਰ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇ ਥਾ ਔਰ ਉਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੇ ਥਾ। ਔਰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਯੇ ਸਟੱਡੀ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕੈਸੇ ਬਣਾ, ਕੈਸੇ ਚਲਾ, ਯੇ ਸ਼ਰੀਰ ਕੈਸੇ ਬਣਾ, ਕੈਸੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁਆ, ਇਸਮੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਤੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਸਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਹਮਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਯੇ ਸਭ ਹਮ ਬਤਾਤੇ ਆਏ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰੀਰ ਕੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਥੀ ਵੋ ਸਿਰ ਸੇ ਪਾਓ ਤੱਕ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ। ਸਿਰ ਕੈਸੇ ਬਣਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਹੈ, ਨੈਕ ਕੈਸੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਹੈ, ਛਾਤੀ ਕੈਸੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੇ ਅੰਗ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਿਆ ਉਨਕੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੈ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਮਾਰੇ ਪੈਲਵਿਕ ਏਰੀਏ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਥੀ, ਫਿਰ ਹਮਾਰੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਤੋ ਯੇ ਬਾਤ ਹਮ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ ਆਏ ਹੈ। ਔਰ ਅਭੀ ਹਮ ਲੋਗ ਜੋ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਚੱਲ ਰਹਾ ਥਾ ਵੋ ਥਾ ਸੈਂਸ ਆਰਗਨਸ। ਸੈਂਸ ਆਰਗਨਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਸਟਮ ਕੇ ਆਧਾਰ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਮੇ ਉਨ ਸਭ ਕੋ ਹਮਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਆ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸੈਂਸ ਆਰਗਨਸ ਕਾ ਏਕ ਅਲੱਗ ਸੇ ਚੈਪਟਰ ਬਣ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਸੈਂਸ ਆਰਗਨਸ ਹੈ ਉਨਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹਮ ਅਲੱਗ ਸੇ ਕਰਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨਮੇ ਹਮਨੇ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾ ਆਈਜ਼ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ, ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮਨੇ ਰੱਖਾ ਕਾਨ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮਨੇ ਜੀਵ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਆਪ ਸਭ ਲੋਗ ਕੋ ਬਤਾਇਆ। ਅਬ ਚਰਨ ਤੋ ਥੀ ਕੇ ਨਾਕ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਹਮ ਬਤਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਕ ਵੀ ਸੈਂਸ ਆਰਗਨ ਹੈ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਸੈਕਸ ਇੰਦਰੀ ਹੈ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇ ਹਮ ਬਤਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਰਸਤੇ ਮੇ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਹਮਨੇ ਕਹਾ ਕਿ ਕਭੀ ਕੋਈ ਕੁਸਚਨ ਆਪਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਉਸ ਹਮ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਕੇ ਆਧਾਰ ਪਰ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਕੁਸਚਨ ਯੇ ਥਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਬ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਯਾ ਯੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਯਾ ਇਸਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਯੇ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਟਾਈਪ ਕੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਨ ਚੀਜ਼ੋ ਕੋ ਹਮ ਦੇਖ ਪਾਤੇ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਯੇ ਓਪੀਅਮ ਹੈ, ਯੇ ਅਫੀਮ ਹੈ, ਯੇ ਮਾਰਫੀਨ ਹੈ, ਜਿਸਕੋ ਹਮ ਦੇਖ ਪਾਤੇ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪਦਤੀ ਵਾਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਡੋਜ਼ ਕਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਵੋ ਸਭ ਯੇ ਦਾਵਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਮਾਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਕੇ ਮੇ ਜਬ ਯੇ ਦਵਾਈ ਜਾਤੀ ਹੈ ਕਹਾਂ ਗਈ, ਕਹਾਂ ਗਈ, ਕਹਾਂ ਗਈ। ਔਰ ਉਸਕੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਨੇ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਥੀ ਕਿ ਜੈਸੇ ਬੇਰੀਅਮ ਮੀਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਹਿਲੇ ਅਬ ਤੋ ਔਰ ਨਏ ਨਏ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਆ ਗਏ ਹੈ ਪੇਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਅੰਤਰੀਓ ਕਾ ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਕਹਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੈ, ਕਹਾਂ ਕੁਛ ਖਰਾਬੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪਹਿਲੇ ਬੇਰੀਅਮ ਮੀਲ ਹੋਤਾ ਥਾ, ਪਿਲਾਇਆ ਜਾਤਾ ਥਾ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹਰ ਆਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਸਕਾ ਐਕਸਰੇ ਲਿਆ ਜਾਤਾ ਥਾ। ਅਬ ਤੋ ਸਕੈਨ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਔਰ ਚੀਜ਼ੇ ਐਡਵਾਈਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੋ ਵੋ ਬਤਾਤਾ ਥਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਗਈ, ਕਹਾਂ ਗਈ, ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸਕਾ ਸਟੇਨ ਹਮੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਤਾ ਥਾ। ਔਰ ਯੇ ਸਿਰਫ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਥੀ ਆਪਕੋ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਮਾਡਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਵੋ ਯੇ ਬਤਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇ, ਕਿਸੀ ਕੋ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇ, ਤੋ ਹਮ ਯੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਯੇ ਦਵਾਈ ਹਮਾਰੀ ਕਹਾਂ ਕਹਾਂ ਗਈ ਔਰ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਯੇ ਆਪਣਾ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਵਹਾਂ ਪਰ ਜੋ ਟਿਸ਼ੂ ਹੈ, ਜੋ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਉਨਕੋ ਕੈਸੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋ ਯੇ ਸਭ ਦਿਖਾ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਆਪਕੋ ਤੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ, ਆਪ ਤੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੀ ਦਵਾਈ ਕਹਾਂ ਗਈ, ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਯੇ ਬਾਤ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਲੋਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਡੀ ਸੇ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਾਡੀ ਕੋ ਹਮ ਸੈਕੰਡਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਮਝਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਹਮ ਲੋਗ ਯੇ ਤੈਅ ਕੀਆ ਥਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਲਾਜ ਹਮ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਆ ਹਮ ਬਿਮਾਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬਾਡੀ ਕੋ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈ ਯਾ ਇਸਸੇ ਉਪਰ ਕਿਸੀ ਔਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਸਕੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਬਤਾਇਆ ਥਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਕ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਤੋ ਹਮੇ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਰਕ ਕਿਆ ਕਹਿਤਾ ਹੈ, ਲੌਜਿਕ ਕਿਆ ਕਹਿਤੀ ਹੈ, ਉਸੀ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਹਮੇ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਯੇ ਕਹੂੰ ਕਿ ਯੇ ਮੇਰੀ ਪਗੜੀ ਹੈ, ਯੇ ਪਗੜੀ ਹੈ, ਯੇ ਮੇਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਹੈ, ਤੋ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਤੇ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰੀਰ ਯੇ ਦਾਵਾ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਮੇਰੀ ਪਗੜੀ ਹੈ, ਯੇ ਮੇਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਹੈ, ਯਾ ਮੇਰੀ ਪੈਂਟ ਹੈ, ਵਾਟ ਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼। ਲੇਕਿਨ ਉਸਕੇ ਉਪਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਯੇ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਯੇ ਮੇਰਾ ਨਾਕ ਹੈ, ਯੇ ਮੇਰੀ ਆਂਖ ਹੈ, ਯੇ ਮੇਰਾ ਹਾਥ ਹੈ, ਤੋ ਸੋਚਣਾ ਪੜੇਗਾ ਨਾ, ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਯੇ ਹੁਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਕ ਆਖ ਕਾਨ ਕੇ ਉਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹੈ
जो इसकी रिस्पॉन्सिबल है। ये गलत करे तो, ये ठीक करे तो, ये जैसे भी चले तो, इसके हर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो है वो कोई और है। और जब उसको हम ढूंढने की बात करते हैं तो ढूंढते ढूंढते हम कहां पहुंचते हैं, सेल डिवीजन पर। सबसे छोटी से छोटी यूनिट इस शरीर की है सेल, और सेल की सब डिवीजन करते करते अल्टीमेट हम कहां पहुंचते हैं, एनर्जी पर। और इसी तरह की एनर्जी ही हमारे शरीर में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये शरीर के जितने भी अंग हैं ये काम कर रहे हैं। अब बात आई कि भाई हमारी मेडिसिन जो है ये आप दिखा ही नहीं सकते कि आपकी कि मेडिसिन कहाँ गई, कैसे इसने काम किया, कैसे हुआ। तो उसके लिए मेरा एक्सप्लेनेशन ये है कि आपने मैग्नेट को देखा है, मैग्नेट को लोहे के कण जो है वो खींच लेता है। डिपेंड करता है कि लोहे के कण बड़े हैं या मैग्नेट बड़ा है, जो भी बड़ा होगा वो एक दूसरे की तरफ खींचा जाता है, हो गया। आप ये तो देख रहे हैं कि मैग्नेट ने लोहे के कण को खींच लिया, लेकिन कैसे खींच लिया ये तो आप नहीं देख सकते। बहुत सी चीजें ऐसे होती हैं जिनको हम होता हुआ तो देखते हैं, लेकिन कैसे होता है ये हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसी तरह ही जो हमारी मेडिसिन है, हम लोग फिजिकल बेस्ड मेडिसिन नहीं है। हम लोग ये समझते हैं कि ये जो शरीर बीमार है ना, ये शरीर बीमार नहीं है, क्योंकि इसकी हेल्थ की, इसकी बीमारी की, इसके क्योर होने की, इसके ठीक होने की जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है वो इसके अंदर पावर है। और पावर्स हमेशा ही वी कैन नॉट सी देम, वी कैन रियलाइज दी पावर्स। हम लोग जो पावर्स हैं उनको महसूस कर सकते हैं जब कोई भी पावर किसी फिजिकल बॉडी के ऊपर असर करती है। तो बिजली की तार में बिजली है, ये हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जब ये किसी तार किसी मशीनरी के साथ लगेगी तो वो मशीनरी चलेगी, तो ये साबित होगा कि भाई ये इसमें पावर थी इसलिए ये मशीनरी चल रही है। शरीर के अंदर अगर वो वाइटल पावर नहीं रहेगी तो ये शरीर के अंग वहीं पड़े रहेंगे, कोई काम नहीं करेंगे, जिसको हम कहेंगे डेड बॉडी। तो मतलब मेरा कहने से ये हुआ कि ये जो शरीर है ये एक्चुअली पार्टी नहीं है। शरीर का बीमार होना, शरीर का सेहतमंद होना या बीमारी से ठीक होना, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसके ऊपर कोई और पावर है जो इसको संचालित करती है। लेकिन विडंबना ये है कि उस पावर को भी अपने आप को साबित करने के लिए कोई फिजिकल बॉडी चाहिए, और फिजिकल बॉडी को कुछ काम करने के लिए, कोई एक्टिविटी दिखाने के लिए किसी पावर की जरूरत है। अगर मशीन है, कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर कैसे बताएगा कि मैं इसमें एक्शन हो रहा है या काम चल रहा है, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी इसकी पावर आएगी। तो अगर पावर नहीं है तो वो कंप्यूटर नहीं चलेगा, और वो पावर भी बगैर कंप्यूटर के अपने आप को साबित ही नहीं कर सकती कि मैं हूं। शक्ति जनरल पावर ब्रह्मांड में विचर रही है, लेकिन वो अपने आप को साबित नहीं कर सकती। उसके लिए उसको कोई फिजिकल बॉडी चाहिए, और वो फिजिकल बॉडी जो है वो हमारा शरीर है, और हमारे शरीर की रिस्पॉन्सिबल पार्टी वाइटल फोर्स है। ये तो साबित होगी बात। अब वाइटल फोर्स इनविजिबल है, और ये हम कह चुके हैं कि इस शरीर की रिस्पॉन्सिबल पार्टी वाइटल फोर्स है, जो ये कहती है कि ये मेरी आंख है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा नाक है, मतलब वो पावर की वजह से ये बॉडी है। तो फिर ये जरूरी नहीं है कि हम ये साबित करें कि कौन सी दवा कहां गई, किधर गई, इस शरीर में उसने क्या क्या किया, कि उसकी डिटेल हम जाने। जरूरी क्या है कि हमने जब वाइटल फोर्स ने जो हमें कहा, जो बताया, वट एवर जो भी सिम्टम्स पैदा होते हैं, वो सिम्टम्स वो कराई, वो वाइटल फोर्स की है कि वो बोलती है मेरे होंठ सूख रहे हैं,
अरे मेरी नजरों के आगे आगे कुछ न कुछ फैल रहा है, ये सब चीजें, ये एहसास, या मेरे पेट में कोई गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ कहने वाली चीज क्या चीज है, वो ऊपर वाइटल पावर है। अगर वो नहीं होगी तो डेड बॉडी में ना तो गैस फॉर्मेशन होगी, ना निमोनिया होगा, ना रूमेटिज्म होगा, कुछ भी नहीं होगा उसको। अगर कुछ है तो ये उस वाइटल पावर की बदौलत ही है। तो अब बजाय इस फिजिकल बॉडी को, क्योंकि इसकी मैंने एक और एग्जांपल भी दी थी, दूसरी एग्जांपल मैंने ये दी थी कि आप फिल्म सभी देखते हो, प्रोजेक्टर के अंदर एक फिल्म रखी हुई है, उसमें लाइट जा रही है और वही छोटी पिक्चर जो तस्वीर है स्क्रीन के ऊपर बहुत बड़ी होकर हमें दिखाई दे रही है। इसी तरह हमारे शरीर के अंदर जो वाइटल पावर है वो एक तरह के प्रोजेक्टर की तरह काम कर रही है, उसके पीछे से लाइट, लाइफ लॉन्ग लाइट है जो नेचर की है, और वो उसके अंदर जो पिक्चर है कि मेरी आंख ऐसे हो, मेरा नाक ऐसे हो, मेरी आंख ऐसे काम करे, मेरा नाक ऐसे काम करे, मेरा कान ऐसे सुने, ये सब उसमें फिक्स है। वो जो इस स्क्रीन, जो हमारा शरीर है, इसके पर्दे के ऊपर हम होता देख रहे हैं। और अगर उस पिक्चर में जो कंप्यूटर जो उसमें पड़ी हुई है उसमें कोई स्पॉट आ गया तो आप पर्दे पर एक बहुत बड़ा स्पॉट देखेंगे, लेकिन आप उस स्पॉट को तब तक हटा नहीं सकते जब तक बैक जहां पर वो पिक्चर पड़ी हुई है वहां से वो स्पॉट नहीं हटाते। हम उसको दाहिने करेंगे, हम उसको बाएं करेंगे, हम ऊपर करेंगे, हम नीचे करेंगे, वो स्पॉट वहीं रहेगा। अब ये भी एक बड़ी फोली है, बड़ा अचंभापन वाली बात है कि किसी को एक बीमारी हो जाती है ना तो डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है, मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको, बवासीर हो जाती है ना, आम लोग समझते हैं इस बॉडी को, बवासीर हो जाती है ना, ओ भाई मैं तो फलाने फलाने डॉक्टर के पास गया था और उसने सर्जरी कर दी, क्या किया, वो हेमराइडल वेसल को स्टिच कर दिया, जो बाहर मस्से दिखाई देते, मस्से क्या थे, हेमराइडल वेसल्स की आगे बड़ी हुई चीज हुई थी, सख्त हो गई चीज थी, उसको हमने काट दिया, डॉक्टर ने काट दिया, अब उसके बाद मुझे बवासीर नहीं हुई। लेकिन हम ये भूल गए कि ये शरीर तो किसी एक वाइटल पावर से ही चलन तक हो रहा है। इसका मतलब यह है कि यहां से वो कुछ निकालना चाहती थी आपके अंदर की खराबी की वजह से, आपने उसका रास्ता बंद कर दिया। अब उसके बाद अगर किसी आदमी को, अब तो वेरीफाई हो चुकी है ना बहुत सी बातें, मैं अभी बताता हूँ आपको, अब बवासीर की वो सर्जरी करवाने के बाद किसी का पेट भारी रहना शुरू हो गया, किसी को एसिडिटी की बीमारी है, किसी को इनडाइजेशन बदहजमी की बीमारी है, या किसी को हेडेक होना शुरू हो गया, तो आप फिर डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर का कहना ना भाई बवासीर तो मैंने ठीक कर दी थी आपकी, ये उसके लफ्ज है कि बवासीर तो मैंने ठीक कर दी थी, ये तो दूसरी बीमारी है, इसका उसके साथ कोई संबंध नहीं है। रियलिटी में क्या है कि आपने वो फ्लो जो कुदरत आपके अंदर से किसी तरह का जमा हुआ गार्बेज या जमा हुई इवन कई बार जरूरी एनर्जी भी उसमें खारिज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो उसको करेक्ट करने वाला मसला है वो ठीक नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो खून आ रहा है, आपने उसका रास्ता बंद कर दिया था। अब कुदरत उसके लिए और कोई रास्ता शरीर के अंदर खोजेगी, वाइटल फोर्स उसके लिए कोई और रास्ता खोजेगी, और उसके बाद जो सिम्टम पैदा होंगे उनको आप या आज के डॉक्टर मेडिकल जो साइंस के हैं वो कोरिलेट ही नहीं करते, और वो बोलते नहीं तो ये नई बीमारी है। लेकिन अब मेडिकल फिलॉसफी ने या जो रिसर्च है देखते देखते बहुत सी ऐसी बीमारियों को वेरीफाई कर दिया है। जैसे मैं और एक एग्जांपल आपके सामने रख दूं, जोड़ों का दर्द सभी लोगों को, तो मैं एग्जांपल वही दूंगा जो आप आसानी से समझ पाए, जो आप रूटीन में होती हैं और जो बातें मैं कह रहा हूं वो आप वेरीफाई कर पाए, वेरीफाई हुआ ना, जिन्होंने रिसर्च की उन्होंने वेरीफाई किया है, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया, हो रहा है लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी मैं कह रहा हूं तो इसके बाद अगर आप वेरीफाई करेंगे तो मेरी बात की सच्चाई आपको पता चलेगा कि यस मेडिकल साइंस ने या फिलॉसफी ने जो अब तक तय किया है वो सही है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर जोड़ों का दर्द हो रहा है, आपने उसी हिसाब से जोड़ों के दर्द को किसी भी तरह की कोई दवाई देकर जबरदस्ती ठीक करना की कोशिश की है,
इस तरह की दवाई दी आपने कि वो ज्यादातर उस इफेक्ट जो है जोड़ों पर हो रहा है और आप उसको शो कर रहे हैं, दिखा कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे मैंने ये गोली दवाई दी थी, ऐसे ऐसे ये गई, इस तरह इसने सोच थी कर दी और उसके साथ ऐसे ऐसे हुआ। जो भी उसका फिजियोलॉजिकल एक्शन होगा उसके बाद शरीर का, वो आपने उसको बता दिया। लेकिन उसके बाद कुछ देर के बाद आपने कहा, या वही पेशेंट आपके पास आता है, बोलता है डॉक्टर साहब मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है, सांस बहुत फूलना लग गया है, सांस फूलता है, पहले तो मैं सीढ़ियों चढ़ता था तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, अब मैं सीढ़ियां चढ़ता हूं तो प्रॉब्लम होती है। सो वो उसको कोरिलेट नहीं कर रहा है, लेकिन अभी मेडिकल साइंस ने ये साबित कर दिया है कि जो जबरदस्त जोड़ों के दर्द वाली चीज को आपने ठीक करने की कोशिश की थी, वो रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते से किसी और अंग के ऊपर चली गई है। और यही साबित कैसे करेंगे भाई, हम कह दिया ये तो साबित नहीं हुआ। साबित हम ये करेंगे कि जैसे ही आप उस पैल्पिटेशन का, उस टेकीकार्डिया का, उसके हिसाब से दवाई देना शुरू करेंगे, तो आप ये देखें, मैं बात वही मटेरियल मेडिसिन की कर रहा हूँ, हम वही देखेंगे कि भाई यार डॉक्टर साहब ये अब आपने सांस की दवाई तो मुझे दी थी, अब दिल ज्यादा नहीं धड़कता है, अब मेरी पल्स रेट भी पहले से ठीक होनी शुरू हो गई है, मेरा ब्लड प्रेशर भी पहले से ठीक होना शुरू हो गया, लेकिन ये जो जोड़ों की बीमारी है ना, ये तो फिर दोबारा आ गई। जब ये डॉक्टर के सामने पेशेंट कहता है तो ये किस तरह की वेरिफिकेशन है। और आप लोग जितने भी सुनने वाले हो, अगर आप इस चीज को माइन्यूटली ध्यान से देखोगे, वाच करोगे, आपको पता चलेगा कि इस तरह की एक नहीं अनेके बातें। एक्जिमा हो गया, खारिश फिंसियां हो गई, स्किन के ऊपर जो भी इरेप्शन, जो भी कुछ ऐसा हो गया, एरिसिपिलेटिस बोलते हैं, एक्जिमा बोलते हैं, अर्टिकेरिया बोलते हैं, बहुत से नाम डॉक्टरों ने उसके रखे हुए हैं, अगर आप उनको ट्रॉपिकल ऑइंटमेंट लगाकर या कोई स्ट्रॉन्ग दवाई देकर, जिसको आप साबित करें कि ये मेरी दवाई गई जी, अंतरियों से स्किन पर गई जी, स्किन की स्किन दबा दिया, किसी भी तरह, उसका बहुत से और एक्सप्लेनेशन है बताने वाले हैं, लेकिन तीसरे चौथे दिन या हफ्ते बाद पेशेंट आया, डॉक्टर साहब मेरा एक्जिमा तो ठीक हो गया, लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा सांस रुक रहा है, जैसे अस्थमेटिक, ये तो दूसरी बीमारी है, अस्थमा की है, और इसका अस्थमा को हम फिर इलाज करेंगे। और जैसे ही वो अस्थमा का कि वो उसकी एक्जिमा तो उसको ठीक हो गया, छोड़ो इसको, अब वो अस्थमा का इलाज करने की कोशिश करता है, तो फिर दोबारा वो देखता, डॉक्टर साहब अस्थमा तो अब ठीक है, लेकिन मेरी स्किन में वही फिर पुराने वाली बीमारी आनी शुरू हो गई। ये वो एग्जाम्पल हैं साधारण, हालांकि और बहुत सी एग्जाम्पल मैं सेट कर सकता हूँ, लेकिन ये वो एग्जाम्पल हैं जो आप लोग आम अपनी जिंदगी में, रूटीन में इसको देख सकते हैं, साबित कर सकते हैं ऐसा होता है। पर अफसोस ये है कि सभी लोग इतने तो परिपक्व नहीं है, इस तरह की चीज को वो जानते तो नहीं है कि हम कोरिलेट करें कि ये स्किन का दबना, स्किन के एक्जिमे का दब जाना वो ठीक समझते हैं, वो बोलते हैं ठीक हो गया था। दबना लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, दबना लफ्ज होम्योपैथी के आप समझ सकते हैं, तो ये वहां से दबा था, कुदरत स्किन से कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपने उसको वहां से निकालना बंद कर दिया। हालांकि सोर्स तो ये होना चाहिए कि जहां से वो आ रहा है उस चीज को ठीक है। मैंने बहुत बार ये एग्जाम्पल दी है आप सब लोगों को कि भाई कोई भी चीज शरीर के अंदर जाती है, वो उसका जो जरूरी पक होता है वो तो बुले लेती है, बाकी को गार्बेज के तौर पर बाहर निकालने की कोशिश करती है, टट्टी के रास्ते, पेशाब के रास्ते, सांस के रास्ते, पसीने के रास्ते। और स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है बॉडी का, और कोशिश ये होती है कि इसमें बहुत ज्यादा वो गार्बेज जाए, ताकि स्किन जो है इस गार्बेज को पसीना बनाकर बाहर बहा दे, और जब पसीना बाहर जाएगा और वो जो केमिकल या टॉक्सिन्स अंदर से आ रहा था उसकी वजह से आपको खारिश पैदा होगी, आप खारिश करेंगे, वो चमड़ी छीली जाएगी, वहां पर जख्म होना शुरू हो जाएगा,
उसको आप उजेन एक्जिमा कहेंगे या वेट एक्जिमा कहना शुरू कर देंगे। पर असल हालात क्या हुआ कि गार्बेज कहीं था शरीर में, उसको निकालने के लिए कुदरत ने यही सोर्स सोचा कि भाई अब खून में ये मिल गया है, अगर मैं पॉटी के रास्ते निकल सकता तो ठीक था, अगर पॉटी के रास्ते नहीं निकला तो ब्लड में मिक्स हो गया तो किडनी में गया। किडनी ने कहा अच्छा मैं मेरे हिसाब से ये गार्बेज निकलना चाहिए, वो पेशाब के रास्ते निकाल दिया, कुछ और बच गया, वो स्किन के रास्ते पहुंच गया, स्किन ने कहा अच्छा मैं इसको पसीने के रास्ते निकालने की कोशिश करती हूँ और वो स्किन निकालती है, लेकिन वो विजिबली जो इरिटेशन होती है उसकी वजह से तो उसको आप खारिश करते हो जख्म हो जाते हैं, उसको ड्राई एक्जिमा को फिर वेट एक्जिमा हो जाता है, फिर और असर आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपने कोई ना कोई इस तरह की मटेरियल मेडिसिन या ट्रॉपिकल ऑइंटमेंट्स उसके ऊपर लगाने की कोशिश की तो यहां से दब जाएगा। मैंने एक और एग्जांपल भी दी थी, खेतों में हमारे चूहे बहुत हो जाते थे ना, फसल का बड़ा नुकसान करते थे, तो हम लोग चूहे मारने की दवाइयां एक एक उसकी खुड थी उसमें डाल दिया, दूसरी में डाल दी, लेक वो दूसरी और निकाल लेते थे, कहीं दूसरी और खुड निकाल देते थे, वो धरती के अंदर से तो फैलता जाता था। ठीक ऐसा ही हो रहा है। तो क्या हुआ, आपने जैसे ही स्किन की इस तरह की बाहर निकलने वाली चीजें दबा दी, वो फिर दोबारा अंदर गई, अंदर कहां जाएंगी, जो इनका लिंक है। और लिंक के बारे में मैं आप सब लोगों को पहले बता चुका हूं कि अंदर के हरेक अंग का, वो अकुपंचर वाले ना जो अकुप्रेशर या अकुपंचर करते हैं वो सब हमारे से ज्यादा डिटेल में जानते हैं कि जो अंदर के जितने अंग हैं उनका बाहर कहीं ना कहीं कनेक्शन है, और उसके कनेक्शन को हमारी जो लाइट है, लाइट तो छत के ऊपर है लेकिन बटन स्विच का नीचे दीवार के साथ लगा हुआ है, मैं इसको ऑन करता हूँ ऑफ करता हूँ वो लाइट जो जलती है। ठीक इसी तरह ही शरीर के अंदर जितने भी अंग हैं ये वेरीफाई हो चुका है और उनका कहीं ना कहीं बाहर के अंगों के साथ संबंध है कि उसके पास तो हम पहुंच नहीं सकते, बाहर तो पहुंच सकते हैं ना। तो स्किन का जो डायरेक्ट अंदर से संबंध है वो भाई संबंध है इसका फेफड़ों के साथ, और इस तरह ही हरेक अंग का कहीं ना कहीं संबंध स्थापित हमने वेरीफाई कर लिया है। और जब वो उसी अंग में जाती है, अब तो हम ज्योतिषी नहीं है ना, हम तो डॉक्टर हैं, हम लोग ये पहले बोल देते हैं कि भाई देखो अगर तुमने क्वांटमेंट लगाना नहीं छोड़ा स्किन के ऊपर तो अल्टीमेट आपको छांस की तकलीफ होगी, इनिशियल स्टेज में छींक आएगी, नाक से पानी आना शुरू हो जाएगा, यार पहले तो मुझे एलर्जी नहीं थी अब एलर्जी ज्यादा होनी शुरू हो गई है। अब क्यों ज्यादा होनी शुरू हो गई ये आप नहीं जानते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं से इसका आउटवर्ड सोर्स आपने बंद कर दिया था, कुदरत ने इसका आउटवर्ड सोर्स और ढूंढ लिया, वो वहीं से कर रही है। तो इस तरह हार्ट की बात मैं कर रहा था, जोड़ों के साथ संबंध था उसका, इस तरह बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका बाहर से हम जबरदस्त उपचार करने की कोशिश करते हैं। मैं उपचार का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, बेसिकली इसको सप्रेशन कहना चाहिए। क्योर का मतलब ये होता है कि जो कॉजेटिव फैक्टर है उसको हमने ढूंढा, कॉजेटिव फैक्टर को हमने हटाया, उसके बाद ये चीज ठीक हो। लेकिन हम ये तो कर नहीं रहे, हम तो ये कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे ये जो बाहर वाली तकलीफ हमें दिखाई दे रही है इसको वॉश आउट करना, ये आंखों के सामने नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए जो कुछ भी हम करते हैं हम नेचर का रास्ता रोक रहे हैं, कुदरत क्या करना चाहती है उसका रास्ता रोक रहे हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि हम लोग ये समझते कि कुदरत क्या करना चाहती है और ये क्यों करना चाहती है, क्यों करना चाहती है। मान लिया जो उल्टी आ रही है, हमें पता है कि कुछ ना कुछ इस तरह पेट के अंदर चला गया है, कुदरत उसको निकालना चाहती है, क्यों निकालना चाहती है, क्योंकि एक्स्ट्रा चला गया है। जानने की तो ये जरूरत है कि कोई भी बीमारी का सिम्टम जो शरीर में पैदा हुआ है उसका कारण ढूंढा जाए और उन कारणों को दूर किया जाए ताकि ये अलामत ठीक हो जाए। लेकिन हम लोग उसको जबरदस्ती बंद करने की कोशिश करते हैं जिसका रिजल्ट ये होता है कि ये किसी ना किसी और रूप में बॉडी के ही अंगों से आनी शुरू हो जाती है। मैं फिर दोबारा उसी एग्जांपल पे आ रहा हूँ कि प्रोजेक्टर में रखी हुई फिल्म में
एक सपोर्ट था, वो सपोर्ट पर्दे के ऊपर बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था और आप स्क्रीन को आगे पीछे कर रहे हो, ऊपर नीचे कर रहे हो ताकि ये स्पॉट दिखाई ना दे, फिल्म चलती रहे, फिल्म का जो वो प्रोजेक्टर में चल रही वो तो चलती रहे, ये स्पॉट ना आए। हाँ, आप ये कोशिश कर रहे हैं, वही शरीर को आप पर्दा समझ रहे हैं है ही, लेकिन आपके जो अंदर वाइटल फोर्स के वो सोर्स पर वो जो स्पॉट है, जब तक वहां से वो ठीक नहीं होगा तब तक ये स्क्रीन को आगे पीछे करने से कुछ नहीं होगा। एक सिम्टम राइट साइड में स्पॉट था, आप बाई उसको खींच दोगे तो वो बाई तरफ चला जाएगा, ऊपर कर दोगे तो उसकी तरफ चला जाएगा नीचे, इस तरह वो चीज मूव करती रहेगी। वही बीमारियों की एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी थी कि भाई बवासीर हो गई, आपने तो कहा ठीक होगी, मैंने दूसरा स्टिच कर दिया था, सर्जरी करवा दी थी, कॉटराइज करवा दी, बहुत कुछ ऐसा करवा दिया था, लेकिन वो पैदा कहां से हुआ था, उसके पीछे कहानी क्या थी और वो कहानी का कारण क्या था। जब तक हम ये नहीं जानते तब तक हम बीमारी को परमानेंट क्योर नहीं कर रहे। हम नाक को मुंह को जो या नाक को इधर से मारते हैं तो इधर कर देते हैं, बाएं से मारते तो दाएं कर देते हैं, सिर्फ यही काम हो रहा है। लेकिन डॉक्टर लोग आजकल की मॉडर्न मेडिकल साइंस ये मानने को तैयार नहीं है कि ये जो बीमारी हो गई है, मेरा पहला किया हुआ इलाज जो है वो गलत था, वो सही नहीं था, उसने क्योर नहीं किया, सप्रेस किया, सप्रेस करके कुदरत को, कुदरत के अगेंस्ट काम किया, और कुदरत के अगेंस्ट काम किया तो कुदरत ने उस गार्बेज को, क्योंकि जीवन तो चलना चाहिए ना, कुदरत का अल्टीमेट काम क्या है कि ये मेरा शरीर है ना, तो मेरे शरीर को चलना चाहिए, वाइटलिटी की ये विरासत है और वो चाहती है कि ये शरीर चले, और उसकी हर कोशिश है आखिरी दम तक, आखिरी श्वास तक ये कोशिश है कि ये शरीर चले। और इस शरीर के चलने के लिए जरूरी है कि इसके अंदर आया हुआ वकार गार्बेज के रूप में इस शरीर से बाहर निकाला जाए, और बाहर निकालने के जो सोर्स है मैंने आपको बता दिए, और उन सोर्सेस को अगर हम दबा देते हैं, प्रेस कर देते हैं, तो फिर कुदरत सोचती है, और उसकी बाहें तो है नहीं ना, और लोग लोग बोलते हैं ना कि रब जो है ना वो कोई डांग नहीं मारता, कुछ नहीं करता, मत मार देता है, और ये मत मारने वाली बात ही है। बजाय इस चीज को समझने के लिए कि इसके पीछे क्या कहानी है, उसको हम सोचें। जैसे चलते चलते मैं इस बात को बता ही दूं आपको, मैंने कई बार आपको बताया कि भाई सारे शरीर का खून दिल से जाता है, सारे शरीर का खून दिल से वापस, अब सभी अंगों से वापस दिल को जाता है, ये आप सभी समझते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता और डॉक्टर लोग जानते हैं कि जितना भी आंतरियों का खून है, जिसको हम पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, आंतरियों का जितना भी खून है वापसी सीधा हार्ट को नहीं जाता, वो जाता है लिवर को, और उस सिस्टम को हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। अब लिवर के पास अगर, क्योंकि लिवर ने उस पूरे पे काम करना है, उसमें कोलेस्ट्रॉल कितना आ गया है, उसमें शुगर कितनी आ गई है, ये सब चीजों की डिवीजन करनी है, अलग अलग चीजें उसको करते रहना है, ओवरलोड ज्यादा काम हो गया, ज्यादा काम हो गया तो उसी हिसाब से आप तो खाए जा रहे हैं, आप तो डाले जा रहे हैं, आप ये तो नहीं देख रहे हैं कि शरीर ने उस चीज को मोटाबोलाइज कर लिया कि नहीं कर लिया। हमें तो पता है भाई सुबह भी खाना है, दोपहर को भी खाना है, रात को भी खाना है, ये तो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके हिसाब से आगे अगर बैकलॉग लग गया है तो वो अल्टीमेट जितना भी खून आंतरियों से वापस जाने वाला पोर्टल सिस्टम है, बैकलॉग तो उसमें भी लग गया है, नहीं जा रहा, क्योंकि उसको सीधा हार्ट को तो जाना नहीं, कुदरत ने नियम बनाया कि अगर ये सीधा हार्ट को जाएगा तो भाई ये तो हार्ट को तो ब्लॉक कर देगा, राम नाम सत जल्दी हो जाएगा। इसको बचाने के लिए कि भाई तो तेरे को भी यहाँ पर कस्टम डिपार्टमेंट है लिवर का, उसके पास जाओ और वो जब पास कर देगा कि यार तुम जाने लायक हो तो फिर चले जाना। इसी की वजह से हमारे पोर्टल सिस्टम में कंजेशन आ गया, और हमारे पोर्टल सिस्टम में जब कंजेशन आ गया तो अल्टीमेट उसका एंड कहाँ है, हमारा एनएस, हमारी रेक्टम, और उसमें वो जो नाली रेक्टम को, एनएस को, गुदा को खून सप्लाई करती है, वहां पर जाकर तीन डिवीजन में बाइफर के बट जाती है, वो तीन ब्रांचेस हो जाती है उसकी, जिसमें किसी बड़ी नहर की तीन ब्रांचेस हो जाए, और वो ब्रांचेस हो जाती है।
अब वो ब्रांचेस को खून हार्ट तो नहीं कह सोच रहा कि वहां आगे भरा हुआ है, वो तो पंप कर रहा है, वो तो सबको उसी तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन आगे तो बैकलॉग लगा हुआ है, उसका खून तो आगे सीधा जा नहीं रहा, तो लिवर को जा रहा है, लिवर में बैकलॉग लगा हुआ है, बैकलॉग की वजह से पूरा आंतरिक का खून जो है वो पीछे बैकलॉग है, वही बल्ज आउट हो गई आपकी वो नाड़ियां जो तीन हिस्से थे वही मौके के रूप में बाहर आ गए। और आपने कहा मैंने तो कटवा दी, सर्जरी कर दी, डॉक्टर बहुत काबिल डॉक्टर था, और उसके बाद कभी मुझे खून आया ही नहीं है। आपने जबरदस्त प्रबंध करके उसको बंद तो कर दिया, लेकिन जो पोर्टल सिस्टम की होने वाली प्रॉब्लम्स थी उसका आपको नहीं पता, वो नई नई और बीमारियां आपके सामने लेकर आएंगी, लेकिन डॉक्टर आपका ये मानने को तैयार नहीं होगा कि इनका संबंध। अब अगर उसके बाद आपको कैटरेक्ट होना शुरू हो गया, उसके बाद अगर आपको माइग्रेशन या सिर दर्द लगातार रहना शुरू हो गया, उसके बाद हमेशा ही पेट भारी रहना शुरू हो गया, नहीं कुछ खाया तब भी लगता है कि भरा हुआ है पेट, तो डॉक्टर आपका उसको कोरिलेट नहीं करेगा उसके साथ, ये कहेगा ये तो नई बीमारी है, बवासीर का तो मैंने हल कर दिया था। और ये इस तरह का भ्रम जो चल रहा है वो मॉडर्न मेडिकल साइंस में चल रहा है। अब सवाल पैदा था कि भाई जिससे हमने शुरू किया था कि भाई वो तो बताते हैं, क्योंकि हम लोग कन्विंस भी तो ऐसे ही होते हैं ना कि भाई जो आदमी बता देता है, देखो भाई मैं ये कर रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे हो रहा है, तो हमारे दिमाग बड़ा बड़ा बड़ा अडंबर रचा हुआ है ना मेडिकल साइंस ने, टेक्नोलॉजी का, डायग्नोसिस का, लेबोरेटरीज का, ये वो, ये सब किस लिए? कन्विंस करने के लिए, इस चीज को जानने के लिए कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। अब देखो भाई तुम्हारे लीवर के टिश्यू हमने लिए थे, उसमें ये चेंजेस आ गई, अब मैंने आपकी किडनी को चेक किया था, अब फेफड़े को चेक किया था, अब हमने हार्ट का आपका ECG वगैरह जो भी था करना किया, और उसने हमें ये दिखाई दिया, और आप कन्विंस हो जाते हैं। लेकिन आगे का जो पोर्शन है, आगे का पोर्शन है कि भाई इसको ठीक कैसे करना है, मैग्नेट को लोहे के कणों को खींचना है, ये आप देख रहे हैं कैसे होता है, आप नहीं देखते हैं, ये हमारा तथ्य है कि हम लोग ये तो नहीं बता सकते, क्योंकि हमारी मेडिसिन ही ये मटेरियल है, और मटेरियल मेडिसिन जो है उसको देने के लिए हमें कोई चाहिए, व्हीकल उसको बोलते हैं, जो कार के साथ जाते हो ना, बाजार जाते हो, इधर उधर जाते हो, व्हीकल बोलते हैं उसको, ये मेरा व्हीकल है, मेरी कार है, और इसके लिए दूसरी टर्म इस्तेमाल की जाती है, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुआ, मेंस्ट्रुआ मीन्स व्हीकल, और इसकी दूसरी टर्म में हम कहें तो इसको बोलते हैं कोई भी ऐसी चीज जो विच इज नॉट हैविंग एनी मेडिसिनल प्रॉपर्टी, दूसरा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं इनर्ट सबस्टांस, इनर्ट सबस्टांस वो सबस्टांसेस हैं जो शरीर को देने से उसके ऊपर किसी तरह का कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है कि उसके सिस्टम को चेंज कर दे, सहूलियत दे सकता है, कोई बड़ी चेंज ले आए ऐसा कुछ नहीं होता, पानी है ना, पानी अब पियो तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इसी तरह ही अब हम लोग मेडिसिन देते हैं, अल्कोहल ड्रॉप बना के भी देते हैं, पानी में भी बनाकर देते हैं, तो अल्कोहल का मतलब होता है उसको प्रिजर्व करना, उस पावर को प्रिजर्व करना। अब लोहे की छड़ी को मैग्नेट कसाने से इसको भी हम लोग मैग्नेट बना देते हैं, इसी तरह ही हमारी जो मेडिसिन हैं, हमने ये पहले प्रोग्राम में अभी अभी साबित कर दिया था आपको कि भाई बीमारी किसको है, शरीर को है या इसके ऊपर की अथॉरिटी को है, जो भी इन्फ्लुएंस हुआ, जैसे मच्छर की एग्जांपल भी मैंने आपके सामने रखी थी कि मच्छर आपको दिखाई देता है, आप इसी को ही पॉजिटिव फैक्टर मान लिया, लेकिन सभी को मच्छर काटता है, सभी को मलेरिया क्यों नहीं होता, सभी को हो जाना चाहिए, नहीं होता, बहुत सी आबो हवा में जितने जरासीम हैं वो हमारे आबो हवा में घूम रहे हैं, सभी बीमारियों तो हमें नहीं होती, इवन कोविड था कितना विरुलेंट था जो आप सब ने देखा, लेकिन सभी को तो कोविड हुआ नहीं, आबो हवा में तो था। इस तरह
सभी बीमारियां हमें नहीं होती। हमारी वाइटलिटी उस इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट नहीं करती या उसका मुकाबला करती है और उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। मलेरिया की बात जो आपके सबके सामने समझाने वाली थी, जो मलेरिया ने मच्छर ने काटा, अब मच्छर काटा तो गया, अब मच्छर के काटने से जो उसका टॉक्सिन आपके शरीर में गया, उस टॉक्सिन को शरीर ने थ्रो नर्व ब्रेन को पचाया, ब्रेन ने वहां पर वो एक ऐसा स्टेशन है जहां से हमारे मटेरियल थॉट्स इमटीरियल में कन्वर्ट होते हैं, मटेरियल बातें इमटीरियल में कन्वर्ट होती हैं, और उसने ब्रेन ने माइंड को कन्वर्ट कर दिया, माइंड को भेज दिया गया है। माइंड आगे हमारी इस सोल के साथ, इस वाइटल फोर्स के साथ संबंधित है जहां तक हम समझते हैं, और उसने आगे से रिस्पांस आपको भेज दिया कि भाई ऐसे करो, मच्छरदानी लो, भाई ऐसे करो, अपने आप मच्छर को बचाओ। और उसके बाद अपना जो उसका काम था वो ये था कि भाई ये इसका जो टॉक्सिन है, मैं इसको अपने ऊपर हावी ना होने दूं, मैं मेरे को ऐसे ना हो कि मलेरिया, जिसको हम मलेरिया बोलते हैं, जो उसकी निशानियां हैं, वो ना हो। क्या है कि ठंड लग के बुखार हो जाए और उसके बाद बुखार तेज हो जाए, उसके बाद पसीना आ जाए, फिर बुखार उतर जाए। तो ये क्या है, ये उसकी टॉक्सिन की वजह से नहीं, ये उस रिएक्शन की वजह से है कि हमारी वाइटलिटी ने इसका मुकाबला करना चाहा कि ये ना हो। इसका जो टॉक्सिन, जो जहरीला मादा मेरे शरीर में आ गया था, इसका इफेक्ट, बुरा इफेक्ट मेरे शरीर पे ना हो, मैं इसका मुकाबला करूं। और जो जो उसके हिसाब से होने वाला था, उसका मुकाबला हमारी वाइटल फोर्स ने किया, जिसके रिजल्ट पे ये हुआ कि ठंड लगी, पसीना आया, क्योंकि डेड बॉडी को अगर मच्छर काट ले तो फिर उसको मलेरिया होगा भाई, नहीं होगा ना, इसीलिए हुआ क्योंकि इसमें वाइटल फोर्स थी। और वाइटल जो भी इसमें रिएक्शन हो रही है, ये तो मानना पड़ेगा ना आपको, जो भी इसमें रिएक्शन हो रही है वो इसकी वजह से हो रही है कि इसके अंदर वाइटल फोर्स है, इसके अंदर लाइफ है। डेड बॉडी में लाइफ नहीं है, उसको कोई प्लेग नहीं होगा, उसको कोई मलेरिया नहीं होगा, उसको कोई हैजा नहीं होगा, उसको कोई उल्टियां नहीं आएंगी, उसकी डेड बॉडी है। किसी भी बाहरी इफेक्ट की वजह से, जो हमारा बद परहेजी कह रहे हैं, किसी भी तरह के नॉन प्रिकॉशनल काम की वजह से अगर कोई बीमारी हमें होती है, तो उसके जो सिम्टम्स पैदा होते हैं, इस सिम्टम का मतलब ये है कि वो जो टॉक्सिन इन्फ्लुएंस के तौर पर, इफेक्ट के तौर पर बाहर आबो हवा में आए, छींक आनी शुरू हो गई। अब आपने तो कुछ नहीं देखा, विजिबल तो आपको कुछ नहीं दिखाई दिया, इनविजिबल तौर पे हमारी वाइटल फोर्स को उसने इन्फ्लुएंस किया, और वाइटल फोर्स ने कहा कि भाई इसकी वजह से जो डस्ट या जो कुछ भी हमारी आंखों में, जो नाक में आ गया है, अब पानी निकालो, पानी निकालो, इसको बाहर निकालने की कोशिश करो। ये उसकी रिएक्शन है, ये वाइटल फोर्स का इफेक्ट है उसके अगेंस्ट, जो इन्वायरमेंट से उसको मिला, जो मच्छर के बाद मिला, जो किसी भी बीमारी के इन्फ्लुएंस के बाद, क्योंकि सीधा तो ऐसा हो नहीं सकता ना। सीधा तो मैंने आपको कई बार कहा है कि भाई हवा में नमक नहीं घोला जा सकता, लेकिन अगर आप अमोनिया गैस को सूंघते हो, सल्फर डाइऑक्साइड को फूलते सूंघते हो, तो उसमें इन साल्टों की गंध आती है। क्यों आई? क्योंकि इसमें साल्ट मिक्स हो गया। कब मिक्स हुआ? जब ये इस हवा के रूप में आ गया, जब उस शक्ल में आ गया, तो ये इसमें मिक्स हो गया। अब बात वाइटल फोर्स की है कि वाइटल फोर्स इनविजिबल पावर है। अब उस इनविजिबल पावर ने आपको बता दिया कि ये जो टॉक्सिन मच्छर की वजह से आया था, इसकी वजह से ये ठंड लगनी शुरू होगी, मैं इसका मुकाबला कर रही हूं। तो हमें ये ऐसी चीज चाहिए वाइटल फोर्स को, शरीर को तो देते ही है, पैरासिटामोल दे दो, टैलेनोल दे दो, ये टेम्परेरी बातें हैं, लेकिन बार बार उसे होता है, बार बार वो चीज रिपीट हो रही है, या इन दवाइयों के फिर बाद साइड इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यही दवाइयां बार बार खाते खाते शरीर इसका भी अपोजिट रिएक्शन पैदा करनी शुरू कर देता है। वो भी मैं बात आ रहा हूं उस पर। तो होता क्या है, अगर आपने सिमिलर टाइप की मेडिसिन, अब नेचर के दो असूल जिसकी बात जहां से चली थी वो ये थी कि नेचर का ये असूल है कि अगर हम, जैसे मान लिया जो दो दोस्तों में झगड़ा हो गया,
झगड़ा हो गया है और आप गए हैं। अब रियल नेचर, अगर उस झगड़े की आप जानते हैं और उसके मुताबिक आप उनको कन्विंस करके करेंगे तो ये तो समझा जाएगा कि आपकी हेल्प है, आपकी हेल्प है, आप वो लड़ाई खत्म करवा देंगे। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है, उसके बारे में जानकारी नहीं है कि भाई इनको किस तरह सेटिस्फाइड किया जा सकता है, क्योंकि मुद्दा ही नहीं पता आपको, मुद्दा ही नहीं पता, तो फिर आप जो जाएंगे तो झगड़े को और बढ़ा देंगे। यही बात मेडिसिन के संबंध में हो रही है कि नेचर आपको सिम्टम के आधार पे बता रही है कि मुझे इस तरह की कोई दवाई चाहिए जिसकी वजह से मैं ये जो शिवरिंग पैदा हो रही है ना, उसकी वजह से उसको मैं मुकाबला कर रही हूँ, जो मच्छर ने काटा था उसका मुकाबला कर रही हूँ, लेकिन शिवरिंग पैदा हो रही है और उसके बाद ये पसीना आना शुरू हो गया, बुखार उतरना उसके बाद उतर गया, फिर दोबारा हो गया। अब इसकी तरह कोई दवाई दीजिए, मेरी मदद कीजिए ताकि मैं एक पावर हूँ, मेरे साथ आपकी पावर मिल गई, मिलेगी तब जब वो अमोनिया गैस वाली सही बात हो जाएगी। वाइटल फोर्स पावर है, अब आपकी दवाई मटेरियल तो वहां तक पहुंचेगी नहीं, ये तो तभी पहुंचेगी जब ये उसी शेप में आएगी। तो जो हमारी इमटेरियल पावर है मेडिसिन की, जिसको हम पोटेंटाइज्ड बोलते हैं, मेडिसिन को हम पोटेंटाइज्ड बोलते हैं, और जैसे उसको हम देते हैं तो उसका इफेक्ट जरूरी नहीं है कि हम शो करें बेरिया मील की तरह, आ मुंह में गया, गले में गया, स्टोमक में गया, आंतड़ियों में गया, हम दिखा रहे हैं आपको, देखो भाई आपका ये यहाँ गया, वहां पर जख्म था, उसके ऊपर जब गया मलेरिया ये जो बेरिया मील, तो ये हमें दिखाई देता। ये तो वे है कि काज का इफेक्ट, कारण क्या था, उसके कारण की वजह से क्या हुआ, डैमेजेस हुआ। अब डैमेजेस को रिपेयर का मतलब करना ये है कि पीछे के जब कारण है, क्योंकि वाइटल फोर्स जो है इस शरीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको इस शरीर को ठीक रखना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो अगर इसको कोई और ओवर पावर नहीं करता तो वो अपने आप इसको रेगुलेट करती है, अपने आप इसको ठीक कर लेती है। इसके लिए किसी वक्त उसको मदद की जरूरत हो सकती है, और मदद जब हम आप करते हैं उसको, तो मदद किस तरह की चाहिए, दोस्तों वाली बात फिर आ जाए कि आपको मुद्दे का पता है, आपको मुद्दे का पता है कि भाई ये किस तरह की लड़ाई चल रही है, ये किस तरह के सिम्टम वाइटलिटी पैदा कर, डेड बॉडी नहीं सिम्टम पैदा करेगी, लिविंग बॉडी पैदा करेगी, और लिविंग बॉडी जो भी पैदा करेगी वो हमारी वाइटल फोर्स की क्राई है, वो हमारी वाइटल फोर्स की फरियाद है कि हमें इस तरह की यार जो कोई मदद कर सकता है तो कर दो, अगर नहीं कर सकते हो तो अल्टीमेट बहुत सी बीमारियां वाइटल फोर्स अपने आप ही ठीक करती है ना। अब तो जब से मेडिकल साइंस आई है तब से तो हम अपना दावा ठोक रहे हैं ना, लेकिन उससे पहले भी लोग बीमार होते थे, उससे पहले भी लोग ठीक होते थे, वो कैसे होते थे, क्योंकि वाइटल फोर्स इटसेल्फ अपने आप को क्यूरेटिव प्रॉपर्टी उसने है, ठीक कर सकती है, बशर्त है कि वो जो कॉजेटिव फैक्टर है वो वहां ना हो। और उस वक्त कॉजेटिव फैक्टर क्या होते थे, गर्मी में सर्दी, गर्मी की बीमारियां, सर्दी में सर्दी की बीमारियां, और जैसे ही सीजन कुदरत बदलती थी वो बीमारियां खत्म हो जाती थी, और इसी तरह महामारियां भी आई हैं उस वक्त भी ऐसे हुआ है, लेकिन वाइटल फोर्स जो थी वो अपने दायरे के हिसाब से, अपनी पावर के हिसाब से उन चीजों को अपने आप रिपेयर करने की कोशिश करती है और करती ही है, और मदद उसको तभी हो सकती है। मैं वही बात पे आ रहा हूँ, ए वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज कम्प्लीटली एक्सटिंग्विश्ड बाय द स्ट्रॉन्गर वन व्हेन बोथ आर डिफरेंट इन काइंड सिमिलर इन देयर नेचर। दोस्त गया, वो दोनों की बात समझता था, उनको पता था कि इनका दोस्त का झगड़ा क्या है, सिमिलर तभी बात करेगी भी ठीक है तू ये कह रहा, तू ये कह रहा, मैं समझता हूँ, और फिर उसको रिजॉल्व कर सकता है। लेकिन जो डिसिमिलर होगा पता तो है नहीं, लड़ाई इनकी क्या हो रही है, वो आप जबरदस्ती जाएंगे तो धक्का मुक्की करोगे तो इंसाफ तो नहीं होगा ना, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना। सो ये नेचर का असूल है कि अगर आप दवाई दें, वो जिस तरह का हालात नेचर ने पैदा किया है उस हालात को प्रमोट करने के लिए दवाई दें,
तो उससे क्या होगा, नेचर को उस वाइटलिटी को मदद मिलेगी। मान लीजिए उल्टी ही आ रही है, तो आप उल्टी बंद करने की कोशिश करोगे तो नेचर के अगेंस्ट कर रहे हो। नेचर चाहती है कि जो अंदर चला गया है अभी ऊपर ही है, अभी नीचे नहीं गया है, ऊपर से निकाला जा सकता है, तो उल्टी हो रही है। और अगर आप इस तरह की दवाई देंगे कि वो निकल जाए जल्दी, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसके उल्ट कोई दवाई देनी शुरू, ना ना उल्टी तो भी बंद होनी चाहिए, ये लो गोली उल्टी बंद हो जाएगी, लेकिन क्या होगा, उससे जो रेस्टलेसनेस पैदा होगी कुदरत उसको फिर दोबारा कोशिश करेगी, अच्छा भाई इधर का रास्ता तो इसने बंद कर दिया, अब मैं इसके दूसरे रास्ते से इसको निकालने की कोशिश करती हूँ, डायरिया हो जाएगा, टटियां लग जाएंगी। टटियां नहीं लगेंगी क्योंकि अभी रास्ता दूर है जाना, क्योंकि उसका लिमिटेड समय है, तब तक शरीर के ऊपर अल्टीकेरिया, शरीर के ऊपर हीट, शरीर के ऊपर खारिश, बहुत कुछ ऐसा होना शुरू हो जाएगा जिसको डॉक्टर कहेंगे ये तो दूसरी बीमारी, इसका उसके साथ क्या संबंध है, मानते ही नहीं है, लेकिन ये उसका संबंध है। तो मैं ये बात कह रहा था कि जो सिमिलर टाइप की हेल्प हम देते हैं वाइटल फोर्स को, उसके साथ वही चीज जो नेचर करना चाहती है अभी कामयाब नहीं हो रही, आप उसको कामयाब करवाओ। सेफ्टी आपका धर्म है, आपको कोशिश करनी है, लेकिन उसको उसी तरह करवाओ तो जल्दी ठीक हो जाएगा, जो निकलने वाली चीज वो निकल जाएगी। और अगर आप उसको डिससिमिलर करते हो तो उसके लिए है ए वीकर डायनामिक अफेक्शन इज सप्रेस्ड टाइमली, सिर्फ टाइम बीइंग वास्ते सदा नहीं, सप्रेस्ड टाइम बीइंग बाय द डिससिमिलर इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन। अब भाई टैलेनॉल का मलेरिया के साथ क्या संबंध है भाई, कोई संबंध नहीं। अब किसी भी दवाई का जो भी हम देते हैं, हमारा काम ये है सिर दर्द हो रहा है, अब सिर दर्द तो हो रहा, पेट में गैस बन रही थी, पेट में खराबियां थी जिसकी वजह से सिर दर्द होना शुरू हो गया, अब सिर दर्द तो हो रहा है कि हमने नाइट वॉचिंग की, दो चार दिन सो नहीं पाए हम और मेरा सिर दर्द हो रहा है, तो आप उसको दवाई दे रहे हो जो जबरदस्ती आपको अफीम खुआ रहे हो, तुमको काम करना ही है और ये इससे सिर दर्द आप टेम्परेरी ठीक कर रहे हो, तो अल्टीमेट क्या होगा, उसके साइड इफेक्ट पैदा होंगे, अल्टीमेट क्या होगा, आपकी बीमारी और बढ़नी शुरू हो जाएगी, लेकिन डॉक्टर ये जो निकलने वाली चीज वो निकल जाएगी।

0: इसके साथ संबंधित कोई भी चीज छोटी से छोटी जब भी जाती है उसको एहसास होता है। इस तरह का सेंसेटिव चीज है यह हमारी वाइटल फोर्स कि इस शरीर के साथ कुछ भी घटित होता है और उसको एहसास होता है, फील करती है। तो इसलिए हम और उसने ऐसा नहीं है, कैसे करती है, उसने जगह जगह अपने रिप्रेजेंटेटिव नर्व के रूप में छोड़े हुए उंगली है, टिप में यहाँ पर नर्व इंडिंग्स होते हैं, जीभ है, टिप्स हैं, हमारे शरीर के चारों ओर नर्व इंडिंग्स हैं, नर्व ब्रेन से जो चली नर्व रीढ़ की हड्डी में गई, वहां से सारे शरीर में गई, सारे शरीर के आगे आगे तक अखीर तक पहुंची, वहां से उसका फिर फ्लो वापस को जाना शुरू हुआ। तो मतलब क्या है, जंक्शन तो है ना यहाँ पर, तो जहां से पहुंचता है और इसकी स्पीड इतनी है, जैसे कोई आपकी उंगली किसी गर्म पानी या गर्म चीज के साथ लग गई तो विद इन ए सेकेंड आप उंगली वापस कर लेते हो। वो कौन कहता है, आपका माइंड है। आपकी उंगली किसी गर्म तवे के साथ लग गई, उसका इफेक्ट इमीडिएटली क्या, ब्रेन से नर्व से ब्रेन को, ब्रेन ने माइंड को ट्रांसफर कर दिया, ब्रेन जाओगे फटाफट उंगली को वापस ले लो। एक सेकेंड के हजारवें हिस्से में आपको ऑर्डर भी आ गया। ये मोदी वाला ऑर्डर नहीं है, अभी तो उसको खबर ही नहीं मिली कि कॉकरोच तो दिल्ली में भी पहुंच गए हैं। इसी तरह ये हर चीज की इतनी सेंसिटिविटी है हमारी वाइटल फोर्स की कि इस शरीर के साथ कुछ भी घटित होता है, इट इफेक्ट्स अवर मेंटलिटी, हमारी मानसिकता को वो तब्दील करती है, चेंज करती है। और जो हम लोग मेडिसिन देते हैं, तो जैसे अभी मैं कह रहा था कि मटीरियल देने की क्या जरूरत है, इमटीरियल दें। अब जब इमटीरियल दें तो कितना इमटीरियल दें, हमने ये कहा कि अच्छा यार 5 ग्राम देते थे अब 1 ग्राम दे दो, नहीं 1 ग्राम नहीं दो तो आधा ग्राम दे दो, आधा ग्राम दे दो भी और ग्राम दे दो। लेकिन अल्टीमेट हम तो समझते हैं कि वाइटल फोर्स तो एक पावर है और हर सब्सटेंस को जब भी आप तोड़ोगे, किसी भी चीज का सब्सटेंस हो, मैंने उत्पज की बात बहुत बार कही कि गुरबानी हमारी ये कहती है और ये सच है, ये फैक्ट है कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसके हरेक, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, उसके हरेक सेल में वो पूरी चीजें हैं, वो पूरा घटित है और उसमें वो पावर है। और हम कम की बात कर रहे हैं कि कम से अगर काम चल सकता है तो बड़ा क्यों दें, बड़ी चीज क्यों दें, कबूतर मारने के लिए एयरगन से काम चल सकता है तो फिर टोप क्यों चलाएं। तो वो कम से कम कहां तक, तो हमने ये देखा कि वहां तक जहां तक इसमें एनर्जी है। और एनर्जी कब है, हमने देख ली एक सेल को सब डिवाइड करते अल्टीमेट उसमें एनर्जी है। और हमारी बॉडी जो है, हमारे बॉडी के सेल को सब डिवाइड करो अल्टीमेट एनर्जी है, उसी को हम वाइटल फोर्स बोलते हैं। तो उसको मैच करने के लिए, ये उसके बिल मुकाबल होने के लिए हम मेडिसिन को उस लेवल तक पहुंचाएं ताकि ये उसका असर कबूल कर पाए। जब ये उसका असर कबूल कर पाएगी, अब आगे बात फिर वो आ जाएगी, ये सिमिलर है या डिसिमिलर। अगर सिमिलर है तो ठीक है यार, ये मेरी जरूरत थी, आपने मुझे ये दे दिया, मुझे ठंड लग रही थी, मुझे कंबल की जरूरत थी, आपने कंबल दे दिया है जी। और अगर आपने कहा नहीं यार इसको अपने आप ही होना चाहिए, अपने आप ठीक होना चाहिए, आप मेरी कमीज भी उतारते हैं तो ठंड तो और लगेगी ना भाई। तो इसी तरह ही ये सारा सिस्टम नेचर का चलता है कि हम डिसिमिलर कोई भी चीज जो नागवार गुजरती है, जो हमारी जरूरत नहीं है, जबरदस्ती आप मेरे पर ठोस रहे हो, उसका इफेक्ट जबरदस्ती का कुछ समय तक तो मैं बर्दाश्त करूंगा, लेकिन एक लिमिट आएगी वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, बगावत हो जाएगी। और ये बगावत होगी तब तक, ये बगावत रहेगी जब तक हम जिंदा हैं, और जब हम जिंदा नहीं हैं ये बगावत खत्म हो गई, जिंदा ही नहीं रहे, डेड बॉडी को तो कुछ भी नहीं होगा। तो हालात क्या है हमारी डिसिमिलर मेडिसिन का, कि हम डिसिमिलर दिए जा रहे हैं, एक के बाद दूसरी चीज दिए जा रहे हैं, असल कारण को हम समझ ही नहीं रहे हैं। और एक बीमारी को ठीक करने का दावा हम करते होते नहीं है, लेकिन हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक मेडिसिन को, एक बीमारी को, एक शरीर के एक अंग से दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, और इसको बोलते हैं कि ये दूसरी बीमारी है। और इन सभी को हम सप्रेस करने की, जगह जगह सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब तक जिंदा है, जब तक वाइटलिटी है, ये इसके खिलाफ बगावत करेगी। थोड़ी देर बाद बगावत होगी, फिर आप कहेंगे इसको और डोज दो जी, 6-6 घंटे बाद दवाई दो। आप 6-6 घंटे बाद बम तो चला रहे हो, और वो उसका मुकाबला कर रही है, अल्टीमेट उसे और बहुत कुछ नुकसान होगा, बहुत कुछ ढह जाएगा, बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। और इसी तरह शरीर में हो रहा है, शरीर इतना रुनझुन हो रहा है कि हम डिसिमिलर कर रहे हैं, पर अगर जो वाइटल फिर उसको चाहिए वही हम दे रहे हैं, और दे भी उसी शक्ल में रहे हैं कि भाई इसके ऊपर बोझ ना पड़े, इसको स्टोरेज ना उसके लिए बनाना पड़े कि भाई मेरा ये स्टोरेज है इसमें लाकर भर दो, मेरा वेयर हाउस भर दो। वेयर हाउस भरने वाली कोई बात नहीं, वाइटल फोर्स पावर है, और जो अगर मेडिसिन आप देंगे वाइटल पावर के तौर पे, ये उसको संभालने की भी जरूरत नहीं, ये उसकी जरूरत बनेगी, ये उसको हेल्प करेगी ताकि इस बॉडी को वो अपने कंट्रोल के मुताबिक नॉर्मली चला पाए। और इसीलिए हमारी मेडिसिन जेरी है वो इमटीरियल होती है, ये मैंने नहीं रखता कि हम दिखा पाए कि मैग्नेट कैसे लोहे की कण को खींचता है। जरूरी ये है कि हम देख पाए कि वो इसको खींच रही है। इसी तरह ये जरूरी नहीं है कि हमारी मेडिसिन कैसे कैसे शरीर में गई, कैसे कैसे इसने क्या किया, ये हम दिखा पाए। जरूरी ये है कि शरीर बोल रहा था कि इसको उल्टी हो रही है, शरीर बोल रहा था कि पेट में गैस बनी हुई है, शरीर बोल रहा था कि मेरा जख्म ठीक ही नहीं हो रहा। हम वाइटल फोर्स को देंगे दवाई जिसकी वजह से वो ठीक हो गया, तो फिर पता चल गया कि भाई ये ठीक हो गया, मैग्नेट ने खींच लिया लोहे के कणों को, तो इससे ऊपर और क्या कहा जाए। सो भाई आज का समा समाप्त। मैं गुरदीप सिंह संधु आपका होम्योपैथी कंसल्टेंट आपकी सेवा में हाजिर हूँ। 9701 सेरा एन कोर्ट डबलन कैलिफोर्निया 94568, फोन नंबर 4086871899। किसी भी वक्त किसी बीमारी के साथ आप जूझ रहे हैं, कोई हल नहीं निकल रहा, सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो कॉल कर सकते हैं 4086871899। और अगर होम्योपैथिक के साइंटिफिक अप्रोच के तरीके से आप किसी बीमारी का इलाज करवाना चाहते हैं, बीमारी का नाम तो इसीलिए है, कोई कैंसर बोल देता है तो अब बनता तो बेचारा आता वैसे ही मर जाता है, लेकिन हम लोग ये नहीं समझते, हम लोग डिस ईज ही समझते हैं, नाम आगे जो मर्जी लगा हुआ हो, हमारी अप्रोच मेडिसिन की वही है जो अभी मैंने एक्सप्लेन की है आप सब लोगों को। अगर इस तरह का इलाज करवाना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं 4086871899। और ये गुजारिश हमेशा ही हम करते हैं, अगर आपको लगे कि इन प्रोग्रामों से आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है तो ये मैसेज आप अपने रिश्तेदारों, सज्जनों, मित्रों को पहुंचाएं, वो भी मेरे साथ फेसबुक में, सबरंग रेडियो स्टेशन में, प्रवास रेडियो स्टेशन में, यूट्यूब में मेरे साथ ज्वाइन करें, और डेली रोजाना कैलिफोर्निया टाइम के मुताबिक 5-6 बजे शाम को रोजाना ये प्रोग्राम होता है, एक दिन हिंदी, एक दिन पंजाबी, एक दिन अंग्रेजी में, और जिस भाषा को भी आप सुनना चाहते हैं आप सुन सकते हैं, ताकि आपका नॉलेज बढ़े, इस शरीर के बारे में जानकारी बढ़े। कल फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम के साथ, आप सबका रब रखा, आप सबकी अच्छी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार।
1: बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, शुक्रिया, थैंक यू, मिलते हैं जी कल फिर। थैंक यू, थैंक यू।

0: हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं जगवंत खेड़ा, थोड़ा होस्ट ते थोड़ा दोस्त, अमरीका दे स्टेट नॉर्थ कैरोलिना दे शहर टोरंटो। जी दोस्तों, आज तुसी सुन रहे हो www.parvazradio.com खेड़ा लाइव शो, जानकारियां भरपूर। दोस्तों, अज असी गुरु रविदास जी दे बारे दे विच थोड़े नाल कुछ जानकारियां दी सांझ पावांगे जी, ते उना दे शब्दां नूं आवाज देणगे दिल्ली तों आराधना सिंह जी, जो के बहुत ऐसे कट सिंगर हन, गायक हन, जो के गुरु रविदास जी दे 41 दे 41 शब्दां नूं गाउण दे विच महारत हासिल करदे हन जी। आराधना सिंह जी जो दिल्ली विच रहिंदे हन, उना दे विचों एक है जी, ते आज असी उना दे मुखार बिंद तो श्री गुरु रविदास जी दे कुछ शब्दां दी सांझ तुहाडे नाल पावांगे जी। साडे नाल जुड़ चुके हन जी आराधना जी, सत श्री अकाल जी, वेलकम प्रवाज रेडियो दे प्लेटफॉर्म दे उत्ते जी।
1: सच्ची गल सर, आप जी दा भी वेलकम भारत दी राजधानी दिल्ली च, और जितने साडे सुनन वाले ने श्रोता, आप सब नु बड़ी अदब बड़ी आदरी नाल सच्ची अकाल, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह।
0: जी वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। जी आराधना जी, अज असी जिमे के असी मैं दसिया है प्रोग्राम दे विच के असी श्री गुरु रविदास जी दे शब्दां दी सांझ पावांगे अपने स्रोतियां दे नाल जी। इस तो पहला कि असी थानू अनुरोध करिए पहला भजन या शब्द सुनाण दा, मैं कुछ थानू दसना चाहना हां कि श्री गुरु रविदास जी भारत दे महान संत, कवि ते समाज सुधारक सन, जिन्हां ने जात पात दे भेद नूं खत्म करन अते मनुखी समानता दा संदेश देण लई अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कीती। उन्हां दा जन्म वाराणसी दे विच, जो कि अजकल बनारस बजदा है, विच होया सी, ते ओह चमड़े दे काम नाल जुड़े परिवार विच पले बड़े। बचपन तो ही ओह रब दी भगती विच लीन रहिंदे सन अते लोकां नूं सच्चाई, निरपयता ते भगती दे राह ते तुरन लई प्रेरित करदे सन। गुरु रविदास जी दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज हन, दर्ज है, जिस विच 41 भजन शामिल हन, जो अज भी लोकां नूं रूहानी चानण प्रदान करदे हन। ओह भगती अंदोलन दे महत्वपूर्ण संत सन अते मीराबाई वर्गे महान भगत उन्हां तों प्रभावित होए। गुरु रविदास जी ने कहा कि रब दी भगती ही सब तों वड्डी है ते मनुखी जीवन दी सफलता दा राह है। उन्हां दीआं सिख्यावां अज भी समाजिक न्याय, समानता ते मनुखता लई प्रेरणा दा स्रोत हन जी। आराधना जी जी फरमाओ जी, साडे स्रोतियां दे सामने अपना पहला गुरु रविदास जी दा शब्द केड़ा सुनना चाहोगे जी?
1: जी सर, वैसे तो सर 8 शब्द मैं रिकॉर्ड किते हुए ने और बाकी दे रिकॉर्डिंग वास्ते ड्यू ने रखे हुए ने, और मैं गुरु रविदास महाराज जी दे श्लोक तो शुरू करांगी और आप जी नूं एक एक करके जिस तरह भी आप जी का हुक्म होगा उस शब्द पर सर्वन प्रामे। गुरु प्यारी साध संगत जी जुड़ गए होने ने, कई लोग बिजी भी होने हैं, लेकिन रेडियो सुनिया जा सकता क्योंकि रेडियो एक ऐसा सोहना माध्यम है कि ये वाल ना भी देखिए तद भी कन्ना नाल असीं श्रवण कर सकते हैं, कोई भी गलबात, कोई भी विचार, कोई भी शब्द, कोई भी भजन। सो मैं सतगुरु महाराज गुरु रविदास महाराज जी की मेरे से बड़ी अपार कृपा है, और मैं चाहनी हूं कि सतगुरु महाराज जी मेरी अरदास है कि जिन्नी सृष्टि है सतगुरु महाराज जी की, सारियां ते मेहर भरिया हाथ हो गए, उन्हां दा आशीर्वाद होवे, ताकि असी अपने हर घर च ये बाणी सुना सकिए, ये गा सकिए और बाणी के मुताबिक ही अपने जीवन नूं सार्थक कर सकिए। सो मैं श्लोक गा करके, और मेरी छोटी जी कोशिश है और उम्मीद करती हूं कि आप सब इनू हुंगारा दोगे और पसंद करोगे, ऐसी आशा है। सो आओ आप शुरू कर दें। खेड़ा साहब, आपके बहुत बहुत आप जी का अनेक अनेक धन्यवाद है कि आप गाए बगाहे साडे वर्गे छोटे बंदियां नूं भी अपने ਚਰਨਾਂ ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਭਾਰੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਸਕਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੋਤਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਚ ਅਸੀਂ ਲਗ ਮਾਤਰਾ ਨਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਗਾਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲੀਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੱਲਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਇਹ ਚ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਹਮ ਸਰ ਦੀਨ ਦਯਾਲ ਨਾ ਤੋਂ ਸਰ ਅਬ ਪਤੀ ਅਰ ਕਿਆ ਕੀਜੇ ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਗੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਸਰ
0: ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ।

माटी को उतरा के फिन चित है, माटी को उतरा के फिन चित है, देखे देखे सुने

0: ಅತಿ ಹೋ ಪುತ್ರ ಕೈಸಿ ನಚತು ಅತಿ ಹೋ ಪುತ್ರ ಕೈಸಿ ನಚತು ಅತಿ ಹೋ ಪುತ್ರ ಕೈಸಿ ನಚತು ಜೈ ಗುರುದೇವ
1: हां जी गुरु रविदास जी का समाज ते प्रभाव बहुत ही गहरा ते क्रांतिकारी सी। उन्होंने जात पात दे भेदभाव नूं चुनौती दित्ती अते मनुखी समानता का संदेश दित्ता जिस नाल दबे कुचले वर्गां नूं आत्म सम्मान ते हक लई खड़ा होण दी प्रेरणा मिली। उन्हां दी गुरबाणी ने लोकां नूं रस्मां ते अंध विश्वासां तों मुक्त करके रब नाल सिद्धी भगती दा राह दस्या। बेगमपुरा वर्गे शब्दा राही उन्हां ने एक आदर्श समाज की कल्पना की जिस विच कोई गम नहीं कोई जात पात नहीं सब नूं न्याय मिलता है। उन्हां दे उपदेशां ने भगती अंदोलन नूं मजबूत किया। मीराबाई गुरु नानक वर्गे महान संतां नूं प्रभावित किया। अज भी गुरु रविदास जी दीआं सिख्यावां समाजिक न्याय समानता अते मनुखता लई प्रेरणा दा स्रोत हन अते लोकां नूं भाईचारे ते रूहानी चानण वल तुरन लई प्रेरित करदियां हन। जी दोस्तो नमस्ते सलाम अज दे खेड़ा लाइव शो दे विच बस इन्ना ही। आराधना जी तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद तुसी अपने कीमती समें दे विचों समां कढ़िया ते श्री गुरु रविदास जी दे शब्दां राही साडे स्रोतियां नूं निहाल कीता जी। असीं आशा करदे हां कि साडी इह सांझी कोशिश तुहानूं पसंद आई होगी। जी आराधना जी लास्ट एक मिनट विच की कहना चाहोगे?
0: जी मैं यही कहना चाहांगी कि गुरु रविदास महाराज जी दे चरणां च सारे जिन्नी सृष्टि दे लोक ने सारी संगत जुड़ी रहे और बाणी सुनदे रहन बच्चा नूं भी सिखाउण और घर घर बाणी सुनाई जावे बच्चा नूं भी सिखाई जावे आप भी सुनिया करो। बाणी तो बद के मैनूं कोई भी लिरिक्स अच्छा नहीं लगता। वैसे प्रोफेशन है साडा गाना बजाना पर इस करके गीत गजल भजन गाई दी लेकिन जो शब्द बाणी च आनंद है ना सिक्ख्या भी है और तुहानू बल भी मिलता है और पूरी तुहानू ऊर्जा मिलती है बाणी पढ़न नाल। ते मैं तो यही कहांगी कि बाणी पढ़िया करो सुनिया करो और एक दूसरे नाल बाणी बारे ही चर्चा होनी चाहिए। आप जी का अनेक अनेक धन्यवाद तुसी इन्ना समय मैनू दिता अपने अनमोल समय चो और मैं प्रभात रेडियो दी हमेशा आभारी हां हमेशा आभारी हां और हमेशा आभारी रहांगे और साडे जेडे श्रोता सुन रहे ने आप सब नु बड़े अदब बड़ी आदरी नाल सत श्री अकाल और इसे तरह तुसी प्रभात रेडियो नाल जुड़े रहो साडे केड़ा साहब जी दे नाल प्रोग्राम सुनदे भी रहो और अपनी गल भी अपने विचार भी सांझे करिया करो। मैं तो यही कहूंगी सर थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद आराधना जी धन्यवाद जी। हां जी दोस्तो बस खेड़ा लाइव शो दे विच बस अज इन्ना ही। फिर एक नवा प्रोग्राम जानकारियां भरपूर लैके तुहाडे नाल असीं जुड़ांगे जी।

प्रवास रेडियो फ्रेंच वर्ल्ड इज वन एंड ओनली वन पंजाबी रेडियो स्टेशन इन जर्मनी। ऑफ कोर्स प्रवास रेडियो बिल्कुल योर ओन रेडियो स्टेशन। Expose yourself, God, you see this wonderful world, lovely, sweet or funny world, with your own watching eyes and experience.

लबा के हाथ से ले आवा तुहारी सोच के परसू पाऊंगा ते खरिया खरिया सुनाऊंगा।

0: घोड़ा चतुर एक पैर है ना, या घोड़ा बोलना या चतुर बोलना।
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार यह घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात।

0: उर्दू का शहर है ना, शर्म उनको मगर आती नहीं। ये ते एक फैसला तो हो गया ना, मतलब कि चाहिदा ते सीगा भी सुप्रीम कोर्ट दे इस फैसले ते तुरंत जेड़ा वो मौके दा जवाब मंत्री सी ओ इस्तीफा दे देना चाहिदा सी
1: हाँ जी
0: कि देश भर दी सुप्रीम कोर्ट रे फैसला दा। लेकिन उन्हें चलो इस्तीफा ते देना बड़ी दूर दी गल, पर मैनू नहीं लगदा कि ओदी गल नू ए सीरियसली लैण।
1: अच्छा
0: चलो खैर, मैं एक जिक्र करना चाहुंदा साडे इस परवाज रेडियो थ्रू
1: हाँ
0: अंतरराष्ट्रीय मंच दे उत्ते
1: जी
0: कि उस प्रोटेस्ट नूं जिहड़ा एक बच्चिया का जायज शांतमई प्रोटेस्ट है उन्हों बड़ी बुरी तरह कुचलिया गया आ। बड़ा उन्हां ते बच्चिया दे जोर जमाई बड़ा उन्हां नूं मतलब कीता गया, और ये आने वाले समय लिए जिहड़ी है ना एक बड़ी इन्हां वास्ते जिहड़ी है ना, अज जिहदे हथ च जोर आ, जिहड़ा गुरु साहब ते साडे 500 साल पहलां कह गए जिस हथ जोर कर वेखे सोए जोर जबसी उन्हों कुचल रहे आ। लेकिन ये साइंस का सिधांत नहीं जानते कि जिन्नी जोर की तुसीं किसी नूं दबाओगे उहदा रिएक्शन भी उन्ना ही
1: जी
0: वापस
1: बिल्कुल
0: जोर
1: बिल्कुल हाँ जी
0: होएगा।
1: जी उन्ना ही होंगे
0: हाँ, ते आने वाले वक्त विच इस चीज़ का रिएक्शन होएगा, क्योंकि ये साडी पीढ़ी दे गिझे पुराणी दे भी उन्हां दे 2-4 साल 5 साल 4 साल पूरा जुल्म करो जो उन्हां नूं हुंदा करो, ते लास्ट वाले 6 महीने आके हथ पला जोड़ के ते उन्हां नूं फिर वोटां लै लो।
1: जी
0: लेकिन ये नवीं पीढ़ी इस चीज़ नूं भुलण वाली नहीं,
1: नहीं वाकई
0: ये इस चीज का वक्त जेड़ा वा मतलब आ मौजूदा सरकार है, 3 साल लंघ गए, 2 होर रह गए है ना।
1: जी
0: हाँ जी, हाँ जी, 26 लगभग खत्म होने के कंडे आते, 27 29 जून के विच अद च इहदी मिड टर्म पोल आ। ते ये मैं मतलब अपने वालों जिदा तुसी भी आपां किसानी अंदोलन दे विच तुसी डट के हमायत कीती सी किसानी अंदोलन दी, क्योंकि अपने हकां दी खातर वो लड़ रहे सी,
1: जी बिल्कुल
0: इहदी वी मैं तुहाडे रेडियो थ्रू मतलब अपने वालों भी मतलब मानसिक तौर ते अपने मोरली जिहड़ी आ जिहड़ी सपोर्ट है फिजिकली ते सपोर्ट, चलो आपां नहीं भी आपां घरां च बैठे हां, लेकिन मैं मोरल सपोर्ट जिहड़ी आ इस प्रोटेस्ट दे नाल सांझी करदा प्रगट
1: वेरी
0: करदा है।
1: गुड,
0: मतलब
1: बहुत चंगी
0: तुसीं
1: गल
0: मेरी
1: है
0: इस गल नाल सहमत होवोगे।
1: बिल्कुल। मैं सहमत हूँ। मैं खैरा साहब जदों किसान अंदोलन चलिया सी तुसी ऐसे ही रेडियो दे उत्ते मेरा ख्याल है 6-7 महीने लगातार जोर लाया सी। मैं
0: जी,
1: तुहाडे
0: आपां जिन
1: नाल
0: उहदे
1: सा
0: चलदे मुताबक आपां हर प्रोग्राम दे विच
1: हाँ
0: आपां
1: हर
0: जिहड़ी आ
1: प्रोग्राम
0: उहनूं
1: च अहीं
0: उबाल आ।
1: किसानां दी गल कीती, एक साल ही
0: जी
1: करदे
0: जी
1: रहे सां असीं।
0: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
1: हाँ जी
0: ये जिहड़ी सपोर्ट हुंदी बाजवा साहब ये बड़ी तरह दी हुंदी है। एक ते हुंदी है मायक भी तुसीं उस विच धन प्रति, उह वी चलो आपां इत्थे ही रहिंदे आ जो साडी समर्था सी आपां जिहड़ा सज्जन आया उहनूं आपणा मायक योगदान पाया।
1: जी
0: एक हुंदी फिजिकली जिहड़े जाके विच प्रोटेस्ट ते बैठे हुए आ उहनां दी योगदान हो गया, ते एक एक मोरल सपोर्ट हुंदी बाजा साहब तुहाडे मानसिक तौर ते तुसीं इस चीज़ नूं मानदे हो भी तुसीं ओ ये चीज़ माड़ी हो रही है,
1: जी बिल्कुल
0: ये भी एक बड़ी वड्डी गल हुंदी है।
1: हाँ जी
0: ते इस करके साडी मोरल भी आ, साडी मतलब हर तरह की सपोर्ट इन्हां दे नाल आ। ते दूसरी जिहड़ी गल है बाजा साहब, मैं जे 2 मिंट होर मैनूं वाहवा
1: बहुत
0: मिलदा
1: है
0: मैं
1: जी, टाइम
0: रेडियो
1: साढ़े
0: दा भी
1: को
0: वाहवा
1: खुला
0: लाऊंगा।
1: है। खैरा साहब तुम जितना दिल
0: जी
1: करता है तुसी
0: जी जी
1: गलबात करो।
0: कल ना बाजवा साहब जिहड़ा कल लंघ गया 10 तरीक दा,
1: हाँ जी
0: वो संसार पद्धर दे उत्ते मानसिक सेहत दिवस सीगा जिहनूं मेंटल हेल्थ डे कह लईए।
1: अच्छा
0: और ये कल मैं पढ़ के बड़ा हैरान होया वेख के सुन के, भाई संसार पद्धर ते लोक जिहड़े अज कल जिहड़ियां साडे शरीर नूं बीमारियां कसरां जां कोई लगदियां ना
1: हाँ
0: जिहड़ियां
1: जी
0: प्रॉब्लम्स आउंदियां वो मानसिक तौर ते वध रहियां है
1: अच्छा
0: घट रही है। हाँ, संसार पद्धर से जो मनुख है वो मानसिक जो तनाव का शिकार हो रहा है अपने काम करके अपने वित्ती साधना करके
1: हाँ जी
0: अपने जमाने की जो चमक दमक है ये पिछड़न करके, मतलब मानसिक जो दबाव का शिकार हो रहा
1: जी
0: उसके एक बड़ा जबरदस्त मेंटल प्रेशर बन रहा। और जेडे डॉक्टर ने जेडे डॉक्टर लोग ने वो चाहिदा सी कि समय की इस बदलती हुई मतलब चाल दे नाल अपने आप नूं बदल दे, और मानसिक सेहत दे डॉक्टर घट ने, मतलब लखां पिछे एक चाहिदा वा ते कई लख पिछे एक वा मतलब।
1: अच्छा
0: ते जदों के जेडे शरीरक बीमारियां वो जिदा ऑपरेशन हो गया किसी ने कोई प्रॉब्लम है वो
1: फिजिकल
0: सर्जिकल दे
1: बीमारियां
0: जेडे
1: जिन्हें
0: फिजिकल दे जां
1: ठीक
0: दूसरे वो ज्यादा ने, ते ये संसार पद्धर दी समस्या है किसी एक मुल्क दी नहीं है। ये हर

कि और धुआं रखा है, हमने कमरे को यार सजा रखा है, अंधेरा बेबसी तन्हाई और सिसकियां, आपकी याद ने पूरा माहौल बना रखा है।